0: connect your dream, connect your future. Steel, connect your heart.
1: Connect Australian Education and Media Services. शिक्षा कमेटी का पूरी होगा वाटर डिपार्टमेंट भवन सुंदर मोबाइल अंठानबे पांच सात 32 84 93 और अंठानबे पांच सात 32 86

0: This is Radio Dhor Barahi, 103.8 MHz.
1: Station 1. Studio Tanchit.
2: Aile, piano ko 11 bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: पोखरा नुडल्स प्रणालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98562279।
1: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबुराई 103.8 मेगाहर्ट्ज अंतर मन के आवाज।

0: शुभ अवसर।
1: अब दिल्ली चौड़ा स्थित महर्षि आयुर्वेद फर्मा में आयुर्वेद डाक्टर विवस वास्तुला द्वारा आयुर्वेद मौलिक पद्धति विभिन्न रोग सफल उपचार
0: आयुर्वेद औषधि आयुर्वेद थेरापी एवं अनुभवी आयुर्वेद डाक्टर द्वारा उपचार होने रोग
1: पेट संबंधी समस्या गैस्ट्रिक वायुगोला कब्जियत अरुचि पेट दुखने पोलने अमिलो पानी आने जस्ता समस्या
0: फिसर फिस्टुला बेरो फर्कने र पीएनएस को सफल उपचार
1: पिनास नाक को एलर्जी नाक में मासु पलाएको
0: मृगौला को पत्थरी पिसा पोल्ने प्रोस्टेट संबंधी समस्या
1: स्त्री तथा प्रसूति रोग महिलावारी गड़बड़ी सेतो पानी बग्ने निसंतान तथा यौन दुर्बलता पीसीओडी
0: नशा तथा बाघ संबंधी रोग ढाड़ कमर को दुखाई घुड़ा छिड़े तथा अन्य संपूर्ण नशा रोग
1: जंडिस टाउको दुख्ने अनिद्रा हाथ खुट्टा गल्ने पोल्ने झमझम गर्ने
0: साथ ही पुराना निको नभएको टाउ छाला संबंधी रोग एलर्जी धूपी दात जस्ता दीर्घ रोग को सफल
1: उपचार होने स्थान महर्षि आयुर्वेद फर्मा दुलेगौड़ा पुनः महर्षि आयुर्वेद फर्मा पहिले भएको स्थान माथि दुलेगौड़ा बस पार्क नजिक ऋतु कुमारी स्पोर्ट्स संघ को सटर में थप नया व्यवस्थापन को साथ में सरको सहर्षा जानकारी कराइन्छ
2: दाई पहिला यो मोबाइल हेर्नुस् न के भयो भयो फोटो भिडियो नम्बर सबै यसमै थियो एक्कासी बिग्रियो
3: खोलिदिनुहोस् त ए चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँ द एप्पल सप नोकिया सर्भिस सेन्टरमा हुनुहुन्छ
2: अनि बन्द छ त दाई
3: यहाँ सबै प्रकारका मोबाइल फोनहरू मर्मत गरिन्छ अनि सुन्नुहोस् त
4: द एप्पल सप नोकिया सर्भिस सेन्टर दुलेगौड़ा बस विसौनीको ठिक पारिपट्टि
5: सबै ब्रान्डका मोबाइल बिक्री साथै एसेसरी सामानहरू उपलब्ध छन्
4: नोट नयाँ आइफोन खरिद गर्नु परेमा वा सेकेन्ड ह्यान्ड बिक्री गर्नु परेमा समेत हामीलाई सम्झनुहोस्
5: प्रोपाइटर राजन पौडेल मोबाइल 98560 62 29
6: मिठो सुगन्धले मेरो मन एकदमै शान्त हुन्छ पनि आफ्नो सबै तनाव भरेर सबैसँग पनि आत्मीय झिन्ने म एकदमै आनन्दित महसुस गर्छु
7: मङ्गलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पाद हो
8: आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ल गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98560 62 79
9: सिर्जना बोर्डिंग स्कूल पोखरा को कक्षा 11 भर्ना खुले संबंधी सूचना
10: सिर्जना बोर्डिंग स्कूल सृजना चोक पोखरा में कक्षा 11 का लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा होटल मैनेजमेंट समूह में नया भर्ना का लागि आवेदन फारम वितरण भइरहेकाले आज भर्ना भई ठुक्क हुनुहोस्
9: यस स्कूलमा विज्ञान विषयसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू र अन्य विषयहरूमा होटल मैनेजमेंट टूरिज्म विज्ञान र व्यवस्थापन दुवैतर्फ कम्प्यूटर साइंस लगायतका ऐच्छिक विषयहरू अध्ययन गर्न सकिनेछ
10: सृजना बोर्डिंग स्कूल शान्ति मार्ग सृजना चोक पोखरा फोन नम्बर 061-578-053 र 061-553-595
11: होइन रमिला जति बेला पनि तल्लो घर जान्छौ होइन किले मुनी लगाएर हो
12: साँच्चै मुनी नै लगाए कि

0: 102.8 अन्डरमन्ड को आवाज
1: स्टेशन 1
2: स्टुडियो 5
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो
4: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प शोप अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साटफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301